खुशी के मैं बांटू के तुझे भी कम न रहे, जो ढूंढने जाओगे मुझसे अच्छी वजह तो ढूंढ न पाओगे प्यार ऐसा उसमें नहीं शक मुझे। But I want you to stay.